0: लाश तुम कुफा भी
1: सूतु सूत साने ने रे जगल मंदे मंदी के नाम मत आकाश के आराम पिस्ते तम से दिखूं तू कला रे नाना का तीन नाना का काम रे ये तीन नाना के अनु ना फिक्री जाने जलू रिस के जान कों को रिस के जान को वा ये जन के जान मंदी के नाम मत आकाश के आराम ये जन के रिस के जान पा नज़े वा फिक्री जाने मु उतनी मान लेकिन फिर से लेन देसाना कुदे मनारा कनास वो सेमु जान ले फिर देसाना दे वा मनारा कंटेन दे ए देमरा रे ना तब फिर तो हम तांग मिरी जाने सेंस अब दे दे
2: क्या ना काफी ना सु पफतारा कौन जाने ये ले फिर ना काफी ना जाने मासूत सा उन अच्छा फिर ले तीन रुपये तक के ना बुला चुना ये नो जाने
3: ए सूट सान ले वचने मुझे ते माता कास्कियारा सुनना ला को ले सूट तुम आते थी ए सेना वातर पे सूट जिस चीज में आपत्ति लगान सूट सान से ले सूट पे ना काफी ना टीम याना कर सारे तुम आते थी वाला सा सीज़न सोच सोच मुला ला सच में ऐसे साझा मापा ये रेना जब यंजा मानता नहीं मापता ना जरा के से ते तंज ना तंग तुम्हारा ने
4: पना Apa ni? Tiko nak kene ciri arah, tapi nane tiko. Arah kan panrinwe teh teta mata kaskar. Teh sutun mitosan. Ye pangkere zana wasro teh mafnasha neto nareo apa tenawe makafi tiko anti lusmam cikti zai tenawe semana cahal ti sani. Ye cuma benyan jalan pamana nane tika manukan cik.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

0: पास तुम कुफा भी
1: ते मानना नी अंडरकिन आरा इकोलॉजी के फलों ने मानना नी अंडरकिन आरा इकोनॉमिक फारु जानुए मानोफे आरुवन जान जो केटिन या दे चारी आरुवन फुट निजू फा आताकुज आजा उन रो जाई लांजा इकोनॉमिक जाई आफाना मापनरुस न्यूल लमंदित ना फालंजा फापुआरी आफाना यंचु मेचा के फावे निफिशी ना फालंजा फापुआरी दे चफानेरे ना न्यूल लायारु फा फानापीना न्यूल आमनी फिल्टेन न्या अंदावनांफ